0: खसमो अगली जो फेदूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोए मोए पाना खाए जिस दा दिता खावना
1: जिस दी है शाबाश।

0: जे तीसरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिला लई। बुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। नवा खंडा भी जानी है नाल चले सब कोई।
1: नाउ रखाई के जस की रथ जगले।

0: असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ
1: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास
0: असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दा

0: वेला वक्त कवण कवण थित कवण वार वेल न पाइय पंडती जे होवे लेख पुराण
1: न पायो कादियां जे लिखन लेख पुराण
0: थित वारणा जोगी जाने रुत महो ना कोई किव करे आखा किव सा लाही क्यों वरनी किव जाना
1: ज्ञान के आखण सबको।

0: सोदर के हा सो कर के हा जित वह सर्व संभाले
1: संखा
0: राग परिस्यो कहियन किते गावन हारे गावे है चित गुप्त जाना लिख लिख धर्म विचारे
1: ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवार
0: गावे है इंदिंदा सुन बैठे देवते अंदर नाले
1: सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे
0: गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे
1: गावन पंडित पंडर की सर जुग जुग वेदा नाले
0: गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मश प्याले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे
1: खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे
0: सही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भक्त रसाले
1: गावन से मैं जितना आवन नाने क्या विचारे
0: सोई सोई सदा सच साहेब सचा सची नाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिनो पाई जो तिस पावे सोई करसी हुक्म न करना जाई मुंदा संतोख सरम पचोली ध्यान की करे बभूत
1: काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत
0: आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत
1: आदेश से आदेश आर नील नाद नाहत जुग जुग एको बेस
0: भगत ज्ञान दया भंडार न कटकड़।

0: खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाल विनोद कोड आनंद
1: शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़ी है बहुत अनूप
0: गया गल्ला कथिया न जाहे जे को कहे पिछे पछताए
1: तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़ी है सुरां सदा की

0: ताके रूप न कथने जाहे।
1: ना उमरन ठगे जाहे जिनके राम बसे मन माहे।
0: भक्त बसे के लोग करे आनंद सचा मन सोए।
1: सचखंड बसे निरंकार।

0: कलंकन बेनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज रुजेश्वरं परम रूपे नमो शास्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: परमी भोगी नमो जोग जगेश्वरं परम।

0: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इसे इसे नमो तंत्र तंत्र
1: सदा सच दानंद सदरंग सर्वंग प्रणासी अनुपय रूपे समस्त निवासी
0: सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता अदो उर्दर गंग गंग ओग हर्ता
1: परम परम परमेश्वर पोषपालंग सदा सबदा सिद्धाता दयालंग
0: नामंग कामंग समस्त पराजी समस्त स्तामंग तेरा जोर चाचरी चंद
1: जले हैं थले हैं अभीत हैं अबे हैं
0: प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं अपचंग पयात शंद
1: आगादे आबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निदाने
0: नमस्तंग नेताथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग गंजे नमस्तवंग पंजे
1: नमस्तवंग काले नमस्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो

0: बीज बीजे अख जे अभिजे समस्तंग प्रसिजे
1: बालंग स्वरूपे को कर्म परनासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी चरपट शांत व प्रसाद
0: अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे
1: अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग
0: सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने
1: सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुक्ता
0: सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग

0: नमस्तुल पर नाम में समस्तुल पर नासे अगंजल नाम में समस्तुल निवासे
1: कामंग बैपुते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग पर नासी सतर्मंग बैपुते
0: सदा सच्चिदानंद सतरंग पर नासी करिमल निंदा समस्तुल निवासी
1: चतुर चक्रवर्ती
0: चतुर चक्र भोगते श्याम पंग सुभंग

अब रच्छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो जे अस्तुज तब सरणी परै तिनकै दुष्ट दुख्त हुए मरै।

0: तेरा सब कुछ है जिससे हे सो पावे।
1: सदा सिपत सलाह तेरी नाम मन वसावे।
0: नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कनेरे।
1: कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरे।
0: सच्चा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया।
1: कर सात सुख मन आहे वसिया जिन इच्छा सब पूजाइया।
0: सदा कुर्बान किता गुरविट हो जिस दिया यह बढ़िया।
1: कहे नानक सुनो हो संत हो शब्द तरु प्यारो साचा नाम मेरा आधारो।
0: पांचे पांच शब्द कर सपा गए शब्द।

0: सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सोनाया
1: तिन कह मन वसया जिन तुरों लिखिया आया
0: एक फिरे कनेरे करे गल्ला गली कने ना पाया
1: कहे नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया
0: पवित होए से जना जिनी हर त्याया
1: हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया
0: पवित माता पिता कुटुंब सहत से ओ पवित संगत सबाया
1: कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया
0: कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया
1: करमी सहज न उपजे बिन सहजे सहसा
0: ना जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए
1: सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए
0: मन धोवो शब्द लागो हर सियो रहो चित लाए
1: कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे ए सहसा इव जाए।

0: न जानी गुरु बाजोत तैसा न जानी
1: तेही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी
0: गुरु कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन बसिया।

हर एक त्यावह एक इको हर सत्या हर इको वरत एक इको उत्पत्या जो हर नाम त्यावह है तिन डर सट कत्या गुरमति देव आप गुर

पार प्रया मोगत्या से संग संत बने भावतार नाम भने रम राम राम माल मन फेरते हर संग संगी आज नानक प्रया प्रीतम थिया मलार महला पंजवा मन कने ब्रह्म बने उकमक तरस चल प्रम।

सचो सतप करना कथना कार सब नानक अवकार अकथ की कथा सुने रे सिद्ध रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान सदा सुख होय महला पहला जर जर ता नौ कलो बंद पूजे प्राण हो सर्ग तिरकंद कहां ते आया काए जान जीवत मरत रह प्रवान हुक्म बूझे तत पछाने ता ए प्रसाद गुरु दे जाने।

सुने अंधे पावे राहु सुने हाथ होवे अशगाहु नानक भगतां सदा विगास सुने तू पाप का नाश मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछै पछताए कागद कलम लिखण हार मन्ने का वकन विचार वैसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोई।

अमोल व्यापारी अमोल भंडार अमोल आबहे अमोल लै जाहे अमोल पाए अमोल सुमाहे अमोल धर्म अमोल दीवान अमोल तोल अमोल प्रमाण अमोल बख्शीस अमोल निशान अमोल कर्म अमोल प्रमाण अमोल अमोल आखिया न जाए आखा करे लिवलाई आखे वेद पाठ पुराणी आखे बड़े करे बखियाणी आखे भरमे आखे इंद आखे गोपी तै गोविंद आखे ईश्वरी आखे

साधु विचारी गावन जति सती संतोखी गावहे वीर करारी गावन पंडित पांड रखी सर जोग जोग वेदा लाली गावहे मोहनिया मन मोहन दुर्गामा छुपे आली गावन रत्नो पाई तेरी अर्षा तीर्थ नाली गावहे जोत मा बल सूरा गावहे घाणी चारी गावहे खंड मंडल पर पंडा कर कर कर रखे थारे से ही तुझ नो गावहे जो तुझ पावन रते तेरे भक्त साली होर के ते गावन से मैं चेतना आवन नान क्या विचारे सोई सदा सच साहब साचा साची नाई है भी होशी जाय निजासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख कीता अपना जिव तह दी बड़ियाई जो तिस भावे सोई कर सी हुक्म न करना जाई सो पात साहू सहा पात साहेब नानक रह जाई मूंदा संतोख सरपा झोली ध्यान की करें बभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पांति।

व्याईते चले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जब तुझ भावे तिवे चलावे जे हो वह फरमान ओह वेखे ओ न नजर न आवे बहुत हो बेडान आदेश तस आदेश आद नीरन आदि अनाह जो जो एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एक आवार कर कर वेखे सृजनहार नानक।

लखवीश लखला गेड़ा आखी एक नाम जगदीश त्राहे पद पवड़िया चढ़िए हो एक ईश हूँ गल्ला आकाश की एक ईटा आई रीश नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मगन देर न जोर जोर न जीवन मर नह जोर जोर न राज मल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस साथ जोर कर वेखै सोई नानको तम नीच न कोई राति रूति तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल तस्वे ताति थाप रखी धर्मसाल तस्वे जी जोत के रंग तन के नाम अनेक अनंत करमी करमी हुई विचार सच्चा सच्चा दरबार तथे सोहन पंच परवान नदरी कर पवे निशान खच पकाई उठे पाए नान गया जापे जाय धर्म खंड काय हो धर्म ज्ञान खंड का खो कर्म केते वर्ण पाणी बसंतर केते कान महेश केते पर मैं घात करी यह रूप रंग के वेश केतियाँ करम भूमि मेर केते केते तू अपदेश केते इंद्र चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्धनाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रत्न समुद केतिया खाणी केतिया वाणी केते पातन इंद्र केतिया सोती सेव केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तथा नाथ बनोद कूड़ आनंद सर्वखंड की वाणी रूप तथा कारत करिए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पिछताए तिथे घड़िए सुरत मात मन बोध तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की सोध कर्मखंड की बाणी जोर तथे होर न कोई होर तथे जोत महाबल सूर तिन मह राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता महमा माहिता के रूप न कथने जाही ना मरे न ठागे जाहे जिनके राम बस है मन माही तिथे भक्त बस के लोक अरे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड बसे निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल तथे खंड मंडल

बाबा बोलिए पात होए उत्तम से दर उत्तम कही है नीच कर्म भैर होए रहा रस सोना रस रूपा कामन रस परमल की बास रस घोड़े रस से जामन रस मीठा रस मास ये तेरा शरीर के कह करनाम नवाह जित बोलिए पत भाई पाई है सो बोलिया प्रवान फिका बोल भगुतना सुन मूर्ख माना जान जो तिस पावै से भले होर के कहन बखान तिन मत तिन पत तिन धन पले जन हृदय रस माए तिन कह कसलाना बरसाले उकाए नानक नदी बहरे राचे दान नाय श्री राग मरला पहला अमल कलोला कूड़का दिता देव हर मती मन विसारिया खुशी कीती दिन चार सच मिलिया तू सोफिया राखण को दरबार नानक साचे को सच जान जित सेवी सो पाईए तेरी दरगह चले मार रहा सच सरा गुड़ बहरा जिस सच्चा नाव सुने बखाने जेतड़े तन मल्हारे जाओ तमन खीवा जानिया जा महली पाए थाओ नाव नीर चंगियाईया सत परमल तन सास बास ताम खुब उजला लख दाती एक दात दुख तब आखिए सुख जिस ही पास सुखमन उसारिये जाके जी प्राण सा तिसम सौ पवित्र है जेता भैन खान होर गन्या सब कूड़ियाँ तुद भावे प्रवान श्री राग महला पहला जाल मोह कस मस कर मत कागत कर सार पाओ कर्म कर चित लिखारी गुर पुछ लिख विचार लिख नाम सलाह लिख लिख अंत ना पारा बार बाबा यू लिखा लिख जान जिथे लेखा मंगी है थे हो सचा निशान रहा जिथे मिलन बड़ियाइया सद खुशियाँ चा चाओ सद खुशियाँ चा जा सद जाओ तेन मह टिके निकले जन्म सचा नाओ कर्म ले पाई ना ही गली बाओ दुआओ एक आवे एक जाहे उठ रखिए नाव सलाहारी को पाए मंगते एक ना बड़े दरबार अगे गया जानिए बिन नामे बेकार पैतरे लगला खब खब जिस जे दे नाम जना सुल्तान खान होंदे डिठे अखे नानक उठी चलिया सा कूड़े टुटे नेहे सी राग महला पहला खबर से मिठे मानी है सुनिए सलोने खट तुरसी मुख बोलना मारनाद की छती अमृत भाओ एक जात को नदर करे बाबा होर खाना खुशी खुआ और जित खा दे तन पीड़िया मन में चले विकार हो रता पहन मारता सफेदी सत दान नीली शाही कदा करनी पैरन पैर ध्यान कमर मान संतो का तन जोवन तेरा नाम बाबा होर पहन खुशी खुआर जित पै दे तन पीड़िया मन में चले विकार हो घोड़े पाखर सोने साखत बुझण तेरी वाट कर कसरी कमान से आसांग तेग बंद गुण धात बाजा नेजा पास प्रगट कर्म तेरा मेरी जात बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर जे चढ़िए तन पीड़िए मन में चले बेकार हो कर मंदिर खुशी नाम की नजर तेरी परवार हुक्म शब्द भाव सी हो राखण बहुत अपार नान सच्चा पातशाह हो पूछ ना करे विचार बाबा होर सोना खुशी खुआर जे सुते तन पीड़िए मन में चले बेकार हो श्री राग महला पहला कुंगू की कह रतना की लालता अगर वाह तन सास अठ सार तीर्थ का मुख टेका तीर्थ घट मत विकास उत्मति सलाना सच ना गुण तास बाबा होर मत होर जे सौ बेर कमाइए कूड़े कूड़ा जोर आओ पूज लगे पी राखी ऐसा मिले संसार नव सदाई अपना हो सत संवार जा पात लेखे ना पवे सभा पूज खुआर जिनको सतगुरु था प्या दिन मेट न सके कोई ओ ना अंदर नाम धान है नाम प्रगट होए नाम पूजिए नाम मनिए खंड सदा सास होए खेहू खेर लाइए ता जियो क्या हो जलिया सब सियाणप उठी चलिया रोए नानक नाम बसारा दर गया क्या हो श्री राग महला पहला गुणवंती गुणवीत हो गुणवंती चूजे लोड़े पर कामनी ना मिलिए फिर कूर ना बेड़ी ना तो

आहो लिखाए को आवो जाहो काहे जी करे जतराई लेवे दे वेटल न पाई रहो तेरे जिया का तो है एक को सावे आवे रोहे जे तू सावे आवे रोहे तू उना का तेरे होए असी बोल बिगाड़ बिगाड़े बोल तू नगरी अंदर तोले तोल जय करनी ता पूरी मत कारनी बाजों घाटे घाट प्राण नानक ज्ञानी कैसा होए आप जाने पूजे सोए गुरु प्रसाद करे विचार सो ज्ञानी तर गए प्रवान श्री राघव महला पहला।

मिठा बोले निवचले से जयतार सुभावंत सुभागणी जन गुर का ये तो पार पूरे पाग सतगुरु मिले या पागे कौ दो हुए अंतरो दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त हुए गुर के भाणे जो चले दुख न पावे कोए गुर के भाणे बिच अमृत है सहजे पावे कोए जिना प्राप्त तिन पिया होमें बिचो खोए नानक गुरमुख नाम ध्याइए सच मिलाव होए श्री राग महला तीजा या फिर जाने अपना तन मगे तो ये सुहागनिया कर्म कमाव दी सही कर्म करे सहज सच मिला बड़ा सच बढ़ाई दे भाई रे गुर बिन भगत न होए बिन गुर भगत।

आपे जग जीवन सुदाता आपे बख्शम लाए जी जाते क्या बिचारी क्या को बख्शन आयो कर्म के आपे देवड़े आए आपे सेव कराए देह कुटाब मोल वाणा चाल दिया नाल न जाई सतगुरु से गुण दान पाया तिस दी की न पाई हर प्रभु सखा मीत प्राम मेरा अंत हो सकाई अपने मन चित कहे काए गुर बिन गुर आप न जाई हर जीव दाता भगत बशल है कर कृपा मन बसाई नानक सुभा सुख दे प्रभु आपे गुरु देव डियाई श्री राग महला तीजा धन जननी जन जाया धन पिता प्रधान सतगुरु से सुख पाया बिचों गया गुमानदार सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निधान मेरे मन गुरमुख त्याई हर सोए गुर का शब्द मन बसे मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आपे मिली आए गुर शब्द की सिलाई रंगे सच पाए सचा सच समाया मिल रहे न बिछड़ जाए जोश का न सो करया वरना का न जाए गरीब सुने बेलियाँ सतगुर पन्ने पाए आपे कार कराए सुई वरना करना जाए मंत्र तरंग में तज विकार इन सहर दे राव रहे निरपो नाम नंकार नानक आमला इन पूरे शब्द पार श्री राग महला तीजा गोविंद गुणी धान अंत न पाया जाए कथनी बदली न पाई हो में बिचो जाए सतगुर मिले सत पहर चे या बसे मने आई भाई रे गुरु पूजे कोई बिन पूजे करु कमा बने जन पदार्थ खोए रहाओ इन चाखिया तिनी साध पाया बिन चाखे भरम भलाए अमृत सच्चा नाम है कहना कछु न जाए ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਸਭ ਸਮਾਏ ਆਪੇ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਏ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਪਾਏ ਗਿਹਾ ਜੀਤਨ ਤੇ ਆਓ ਅਜਿਹੇ ਕਨਕ ਮਾਏ ਜਤ ਸਾਹ

सुत संपद बनता विनोद छोड़ गए बहु लोग पो हैवर गैवर राज रंग त्याग चलेओ है मूड नंग चो चंदन देहे फूलिया सो तन धर संग रुलिया सो तन धर संग रुलिया सो तन धर संग रुलिया मोहे मोहे आ जाने दूर है को नानक

हरा फिर उजड़ पाए समुची मानवता दे सर्ब सांझे रहवर धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी इलाही हजूरी अंदर खालसा क्लब वालों आयोजित किए गए विशेष गुरमत समागम च हाजरियां भर रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों सरबंसदानी गुरु गोबिंद सिंह साहिब पिता जी वालों बख्शी फतेह प्रवानों जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संग जौ तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी सतगुरु जी ने तरस करके आपां सारियां नूं निवाज दियां सत संगत दी अमोलक दात बख्शी है। गुरबाणी कीर्तन राही आप जी ने आनंद माणिया है। गुरु कृपा अते संगत दी आसीस सदका प्रबंधक वीरां वल्लों जिस विषय दे उत्ते विचार करन लई किया गया है ये विशा अजोके समय दे विच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अज आपां गल कर रहे हाँ गुरबाणी राही मानसिक समस्यावां नूं निजिठणा। आप सारे भैन भरा गुरबाणी नाल जुड़े हुए हो कृपा करके एकाग्रता नाल बैठे हो। वैसे मैनू यह भी पक्का पता है कि तुहाडे सब दे फोन भी साइलेंट ते लगे होणगे पर एक बारी चैक जरूर कर लियो तां जो आपां पूरा ध्यान केंद्रित करके इन्हां नुक्तियां नूं समझ सकीए। गुरु सवारियो जदों असी गल करदे हां मानसिक समस्यावां दी इहदा मतलब कि साडा मन बीमार है। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन बाणी दे विच साडे मन उत्ते सब तो वध जोर दिता गया। आपां वार वार बाणी विच मन दा जिक्र पढ़दे हां मेरे ख्याल सब नूं याद है जरूर बोलियो कृपा करके ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले ए मन प्यारे आ तू सदा सच संभाले ए मन चंचला चौतराई किने ना पाया। नित असी जप बाणी विच पढ़दे हां मन जीतै जग जीत। कबीर साहब महाराज बख्शिश करते ने मम्मा मन स्यों काज है मन साधे सिद्ध होए। बई इस मनुख का सब तो जिहड़ा मुख काम है वह अपने मन नाल है। जिन्हें मन नूं साध लिया उहदा जीवन सफल हो गया। मन ही मन स्यों कह कबीरा मन सा मिलिया ना कोई ए मन सकती ए मन सियो ए मन पंच तत्त को जियो ए मन ले जो उन मन रहे तो तीन लोक की बातें

कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखें दर्श तेरा राम, लाख जेगवा देहो मेरे प्यारे, मुख हर आराधे मेरा राम, हर आराधे जम पंथ सादे, दुख ना व्यापै कोई, जल थल मैयल पूर्ण स्वामी, जात देखा।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस घर की तो इस घर की घर मानस जन्म अमोल है तो इस घर की कीमत परी